इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Time check with Brightsun Travel. Brightsun Travel is celebrating 40 years and you get a gift. Enjoy £40 off per adult on hand-picked holidays, plus free transfers, spa vouchers and excursions. Discover our new deals at brightsun.co.uk/40.
1: 9:50 and Purnima's message says, Jis prakar ped par naye patte aane ke liye patjhad ka hona aavashyak hai, उसी प्रकार जिंदगी में कामयाब होने के लिए संघर्ष का होना आवश्यक है. As in सफलता एंड संघर्ष, सक्सेस एंड स्ट्रगल, intricately linked, of course they are.

0: Sanjay Sanj.
1: So which one do you want to hear? A, B, C or D? Send your vote.
0: Next on Sunrise. Sunrise Radio.
2: Shabnam Sahi on Sunrise with India's best dancer on Sony TV. Nothing beats the feeling you get when dancing. So when you feel like dancing, dance. The stage is set. The dancers are ready. Are you? India's best dancer season 5. Coming soon on Sony TV.
3: अब आमिर कर्ज से आजाद है क्योंकि हम साथ हैं। हम प्रिया के साथ हैं उसे एक बेहतर और सही घर दिलाने में। हम मुहिम चला रहे हैं ताकि रहीमा जैसे लोगों पर एनर्जी बिल एक बोझ ना बने। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, एक इंडिपेंडेंट चैरिटी, हर जरूरत पर मुफ्त और भरोसेमंद सलाह जो सच में काम आए। हम साझा चुनौतियों पर काम करते हैं एक संतुलित समाज के लिए। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, द पीपल्स चैंपियन। Search करें Citizens Advice.
4: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.

0: इस दिल का मंदिर मिर्च मंजी उन्हें आई
1: ओ चेहरा है या चांद
0: की
2: चांद
0: taking you to the moon with these right 07925700272 A or B.
3: Kavita on Sunrise with India's best dancer on Sony TV. Nothing beats the feeling you get when dancing. So, when you feel like dancing, dance. The stage is set. The dancers are ready. Are you? India's best dancer season 5. Coming soon on Sony TV.
4: Planning the holiday of a lifetime or visiting loved ones? Call Southall Travel 24/7. Fast, reliable and with a price match guarantee. Book now on 0208-574-8410. Southall Travel. Any airline, anywhere, anytime. At all protected. इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
5: Craving authentic masala chai in a flash
6: Meet Mukti instant chai just MTS Add hot water. Stir. Boom! Chai time in seconds.
5: Warming cardamom, spicy ginger, rich tea, all mixed, all perfect.
6: Mukti Chai, your shortcut to tradition. Anytime, anywhere.
5: Feel the flavor. Taste the moment. Mukti Instant Chai.
7: Hey!

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: पंजाब लगे। ब्रेकफास्ट विद पॉल शाह एंड विटाबायोटिक्स।
1: निक निको यू मस्ट डू दिस सॉन्ग।
0: Drive with Sonia Dutta and Pepe's Piri Piri.
2: Well done. Not bad, not bad.
0: This is Sunrise Radio.